0: अशोक साल त ढुक्क नारेबत्ती
1: हा त पोर्सालिक बास सम्झोट आम हिन्दो लक्टेर हटबरा पानी बस्त बेर अस्तिम कहाँ र सेक्दायो त सोचो त लट्टी चिपकम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब डिकुम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारेबत्ती
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बह्य ढ्यार जोखिम रहत उह मार बह्या से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण कर सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: गर्जन सधैं बाघ झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।
1: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
2: You know you've been my best buddy since forever, right?

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बास सम्झोट आम्भिन्द लक्तिर हरबरा पानी बस्तबेर अस्ति चिमचाम कहाँ रहेछ जायट सोचोट लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छत पटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब ढिक ढिकुम्छ सुरक्षा।

0: चिट ठाउँमा सरले नारी बट्टी
1: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले सावधानी अपनाए लड्डा फलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
2: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
3: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

0: Hey, fresher. You, chocolate fresher. All this joya chai stuff. मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

0: फ्रेश हो, जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हो। यू लाइक मी?
1: एक्चुअली यस।
0: गुड, बिकॉज़ आई थिंक यू रियली फील क्यूट।